0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: अब सुनिए

एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: जितना सुंदर ये गाना उतनी ही सुंदर ये मूवी। मोनाली ठाकुर की बहुत ही मीठी मिश्री जैसी मीठी आवाज में सवार लू फ्रॉम द मूवी लुटेरा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा के जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। मंडे का दिन August 3rd कैसे जा रहा है सो फार? मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है, जो अभी बस नींद से उठे ही हैं या फिर जो ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं वर्क के लिए या फिर जो ऑलरेडी निकल चुके हैं काम के लिए, सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब का दिन बहुत अच्छा जाए मेरी जान। याद दिला दूँ 3311 1063 इज द नंबर, बिंदास मैसेज कर दो, मुझे बता दो क्या कर रहे हो इस वक्त, अगर रास्ते में हो ऑफिस की तरफ जा रहे हो तो वो भी बता सकते हो, बट यार ड्राइव कर रहे हो तो नहीं फोन यूज करना ठीक है।
1: तेरा यार हूं मैं,
0: दैट इज व्हाई आई केयर फॉर यू यार। I don't know why I have some strong admiration or inclination towards the 90s ka jo indie pop era tha. Kya badhiya gaane aate

मेरा भी दिन बन जाए। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल सुनते हैं क्या कमाल है इन द वॉइस ऑफ दिलजीत दोसांझ फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस।

0: Goa's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas. World's favorite jeweler.
4: Hi, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में सोनू के टीटू की स्वीटी से तेरा यार हूं मैं बहुत सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहां पर एंड वी हैव गॉट अ फ्यू गुड मॉर्निंग मैसेजेस ओवर हियर। अब्रायर जी ने गुड मॉर्निंग भेजा एक चाय के प्याले के साथ। ओके शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग टुडे लेट योर स्माइल शाइन योर काइंडनेस ग्लो एंड योर एक्शन स्पीक बी द रीजन समवन बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ पीपल। यार कोशिश बहुत रहती है पर कभी कभी चूक जाते हैं बट या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टू बी काइंड टू अदर्स बिकॉज उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है यार हमें पता नहीं है जैसे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है राइट। सो अगर हम एक दूसरे से काइंड रहना शुरू कर देंगे फॉर नो रीजन एक दूसरे को जस्ट यू नो पास अ स्माइल व्हेन यू आर क्रॉसिंग बाय इट मींस अ लॉट। सो या डू दैट। एंड बिलाल जी का मैसेज आया गुड मॉर्निंग। यासिन अब्बासी जी कहते हैं हाय वेरी गुड मॉर्निंग आई एम ऑलरेडी डन विद वर्क गोइंग टू स्लीप नाउ अरे अरे हैव एन अमेजिंग स्लीप एकदम पीसफुल और साउंडफुल और जब आप उठे एकदम रिफ्रेश्ड और रिचार्ज हो। एंड इमरान जी का मैसेज आया है योर वॉइस इज द मेलेडी दैट प्ले इन माई हार्ट एवरी मॉर्निंग। नहीं हार्ट नहीं दैट प्ले ऑन रेडियो ऑलिव एवरी मॉर्निंग विशिंग यू अ ब्यूटिफुल एंड स्वीट डे। थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल दैट लव। और ऐसा नहीं है कि बस हो गया है आप और भेजिए मुझे अच्छा लगता है।
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल
0: ओए होए
1: Looking very good, very nice. Good morning, pineapple. Looking very good, very nice.
0: Keep looking good and very nice and have an amazing day to yourself. Sending cool song of the hour for you. Stay tuned and Jubindas, meri jaan.
2: Cool song.
3: Radio Olive par. Aane wala gana. Cool song of the hour.

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: Safari, world class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: शान और साधना संगम की आवाज में कुछ ना कहो ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और एक इतनी बढ़िया बात मैं बोलने वाली हूँ जो काफी रिलेटेबल लग सकती है कुछ लोगों को. सो इमेजिन कि एक पर्टिकुलर चीज आपको इस वक्त चाहिए, लाइक यू नो यू सॉ अ शर्ट, आप शॉपिंग के लिए गए और यू सॉ अ ड्रेस एंड यू लाइक कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मिली तो नहीं यार आई कांट जस्ट लूज इट, आई वॉन्ट इट इन माई वार्डरोब, पर नहीं मिली या तो सोल्ड आउट हो गई या फिर आपके साइज में नहीं है यू नो या फिर वो फील नहीं आ रही है उससे पहन के, नहीं मिली वो उस टाइम पे, तो हम थोड़े मायूस होते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, मुझे चाहिए थी वो क्यों नहीं है वो मेरे साइज में, या फिर क्यों चली गई सारी की सारी, क्यों बिक गई. लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि वो शर्ट गई है तो बेटे आगे ना एक बढ़िया सा सूट और जो ड्रेस गई है उससे एक बेहतर ड्रेस आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उस मोमेंट में हम वो चीज़ सोच ही नहीं पाते. एंड दैट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस, टू द बेस्ट ऑफ अस, यू नो इट कैन हैपन इन अ करियर और हमारी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, व्हेन यू नो यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ एंड यू लाइक कि भाई ये इंसान नहीं रहा ना मेरी लाइफ में तो मैं तो नहीं, हो ही नहीं पाएगा मुझसे, आई कांट डू लाइफ विदाउट दिस पर्सन. एंड इवेंचुअली द सिचुएशन कम्स कि यू नो जिस पर्पज के लिए वो आपकी लाइफ में आते हैं दे जस्ट गो अवे, राइट, पर Life continues and you get something better. So, हमारे जो plans है ना basically, उससे 10 times better plans universe हमारे लिए बना कर रख रहा है. तो that is why they say कि अगर आपके मन का हो गया तो बढ़िया ही है और नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा बढ़िया है. So just have faith in yourself and universe. बाकी सब सही है यार मेरी जान. Stay tuned on Jio Bindaas.

0: फ्री इन कतर। सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Adif Aslam ki awaaz mein beautiful track. Bindaas morning chal raha hai. Abhi aur waqt ho chuka hai. Radio Olive presents Blackboard Stories. So Blackboard Stories ka aaj ka jo sawal hai, ekdam asaan sawal hai. The question is, which is the most expensive spice in the world? सबसे महंगी सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सी है दुनिया में, ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. और आज नाजनी जी का मैसेज मुझे मेरे आने से पहले नहीं आया था, पर अभी डेफिनेटली आ गया है. गुड मॉर्निंग, टाइम टू क्रश योर गोल्स. अरे यार, ये जो बढ़िया मोटिवेशन देती है ना सुबह सुबह, दिल खुश हो जाता है. एंड सही बात है, हर दिन एक नई शुरुआत है. जो भी आपका गोल है उसकी तरफ काम करते रहो. जी हाँ, एवरी डे इज अ न्यू चैप्टर मेरी जान. बट या टुडे इज द क्वेश्चन वाला टाइम. टुडे नहीं, राइट नाउ इज द क्वेश्चन वाला टाइम. सो मुझे बताइए कि विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड. सबसे महंगी स्पाइस कौन सी है दुनिया में. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर आप कॉल कर सकते हैं 4444106 पर. फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, जब तलक, इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह एंड अगासा फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. स्टे ट्यून्ड एंड जीवन दास मेरी जान. रेडियो

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all

0: टास मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
3: उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज में सूरमा मूवी से बहुत सुंदर गाना इश्क दी बाजियां only on Radio LF 106.3 FM दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अब
1: Radio LF presents Blackboard Stories
0: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में मैंने सवाल पूछा था विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड और मुझे काफी आंसर्स आए हैं यहाँ पे और सबने करेक्ट आंसर दिए हैं. देर इज जीनिया जिन्होंने जवाब दिया है, अर्श का मैसेज आया है, अरहम इज देयर, संधु जी ने मैसेज किया है, साथ में श्रेया का मैसेज आया है, शहबाज का मैसेज आया है एंड यस द करेक्ट आंसर इज सैफ्रॉन. एंड यू नो व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव, बिकॉज इसका जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है ना, इट इज वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत का काम है. इट कम्स फ्रॉम अ फ्लावर को आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस फ्लावर्स नेम राइट और नॉट, बट इट इज क्रोकस सैटिवस और इस हर एक फ्लावर में सिर्फ 3 टाइनी रेड स्टिग्मास होते हैं जो कि लेटर ऑन सैफ्रॉन बनते हैं और उनको हैंड पिक करना पड़ता है. सो यू नो और वो सुबह सुबह की ही प्रोसेस होती है, जब फ्लावर्स फ्रेश होते हैं आपको तभी उन्हें पिक करना होता है. सो 150,000 से लेकर 200

स्ट्रेस करने के लिए भी ज्यादा कष्ट की जरूरत नहीं है, बस एक छोटू सा मैसेज आपकी तरफ से, ओहो इट डज वंडर्स यू नो। Absolutely love this track, और फिर ये भी आ रहा है। कुछ तो हुआ

0: एलुकास वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
1: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विद अस।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha. एजेंट विनोद से मीका सिंह की आवाज में पुंगी ओली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और मित्रश ऐप पे एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि जितने भी अब सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग थ्रू मित्रश ऐप वहाँ पर यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अगर आपको किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करनी है एंड यू नो यू जस्ट वांट टू वॉन दी अथॉरिटीज़ और लेट देम नो मेक देम अवेयर अबाउट इट यू कैन डू दैट। इट विल जस्ट मेक दी सर्विस फास्टर और पब्लिक सेफ्टी को भी स्ट्रेंथन करेगा। सो जो भी रिपोर्ट्स आप सबमिट करना चाहते हैं डायरेक्टली आपके थ्रू कर सकते हैं, आपको MOI जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स जैसे सस्पिशियस व्हीकल, सस्पिशियस इंडिविजुअल्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, रेसिडेंसेस या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ऑल यू हैव टू डू इज मित्रश ऐप जो है वो ओपन करनी है। वहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट सिक्योरिटी कंप्लेंट और वहाँ पर आपने चूज़ करना है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और फिर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो प्रोवाइड कीजिए एंड देन सबमिट योर डिटेल्स। और उसका फुल ट्रैक भी आप उस ऐप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो थिंग्स आर गोना गेट इजीयर फॉर यू, यू नो जब आप ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करोगे तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल और फ्रूटफुल ही है। फालतू की चीज़ों के लिए करोगे तो वो जिंदगी को और ज़्यादा मुश्किल ही बनाएगी। यहाँ आसानी हो रही है क्योंकि सही इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास मेरी जान।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: Safari, world class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

क्या हो गया इस दिन सवाल आई वांट टू आस्क द वेदर भाई, मतलब क्रेजी हो रखा है। कल 50 था दिन में, एसी चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है अब। Impossible to like this weather. It is 37 degrees right now, but it feels like 45. कोई सेंस है इस बात की? कम महसूस होना चाहिए, ये ज्यादा क्यों हो रहा है? बट यार प्लीज अपना ख्याल रखें, बहुत सारा पानी पीते रहें। अब बाहर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा सनस्क्रीन भर भर के लगा लो एंड ट्राई करो कि ना ही निकलो, यू नो जितना घर से काम हो जाए बेहतर ही है। बट स्टिल इफ यू आर गोइंग प्लीज कीप वाटर विद योर सेल्फ, यू नो स्टे हाइड्रेटेड, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रखो, ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और लाइट खाना खाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि जितना हैवी खाना हम खाते हैं ना उस की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, यू नो। एंड ऑल्सो फूड, वॉट एवर यू आर ऑर्डरिंग ना उसको रख के फिर बाद में खाएंगे, ये वाला सीन तो करना ही नहीं है। आपने अभी मंगाया आप अभी खाइए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस आ रहे, खराब हो जाता है, यू नो वो इतना ट्रैवल कर कर आ रहा है एंड देन यू अगेन कीप इट, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो प्लीज अपना ख्याल रखा करो मेरी जान, और सुनते रहो रेडियो ऑल एफएम, जियो बिंदास।

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning। Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler। Malabar Gold and Diamonds की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows। Save more, dream bigger। Win up to 5 million riyals with Commercial Bank in association with Naseem Healthcare। No queues, no hassle, just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations। Download it today।

You're listening to Radio Oliver 6.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. जानिए सुने आपने चोर निकल के भागा मूवीज से एंड QSC ने लॉन्च कर दिया है यंग इन्वेंटर्स प्रोग्राम जी. सो ये बेसिकली लॉन्च तो हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ने किया था ड्यूरिंग वेब समिट का था 2026. अभी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो स्टार्ट हो चुका है. सो दिकाता साइंटिफिक क्लब जो है वो लेकर आए हैं यंग इन्वेस्टर्स प्रोग्राम जो कि ओपन है फॉर यंग पीपल एज्ड 15 to 30 ईयर्स ओल्ड और जिन्हें साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंटरेस्ट है बेसिकली उनके लिए. सो इस प्रोग्राम का जो एम है वो एक टू डिस्कवर एंड डेवलप यंग इनोवेटर्स ऑब्वियसली एंड जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनके उनको एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में टर्न करना है. सपोर्ट कतर्स इनोवेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके दे विल रिसीव हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स एक्सेस टू लैब्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्निकल गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स अलॉन्ग विद दैट. ये जो प्रोग्राम है इट कवर्स द कंप्लीट इनोवेशन जर्नी. यू नो आइडिया कैसे जनरेट करना है, डिजाइन थिंकिंग, फीजिबिलिटी स्टडीज, इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बिफोर एन इवैल्यूएशन पैनल. और साथ में इस ट्रेनिंग में आपको प्रोग्रामिंग के लिए ट्रेन किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ट्रेन किया जाएगा, 2D एंड 3D इंजीनियरिंग के लिए एंड टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन. सो लाइक यू नो फुल 360 डिग्री कवर हो रहा है. सो इफ यू इंटरेस्टेड इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड यू वॉन्ट टू गो ऑन एन इनोवेशन जर्नी दिस वंस फॉर यू. सो डू गो फॉर इट एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange.

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वेल्विलीन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्विलीन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वेल्विलीन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वेल्विलीन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds, Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: अदनान सामी की आवाज में बजरंगी भाईजान से भर दो झोली मेरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार, सुकून भरा। तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड एस्पायर जोन इज अबाउट टू होस्ट फर्स्ट एवर रन द डोम। जी हाँ, सो एस्पायर जोन फाउंडेशन ने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ रन द डोम ऑन August 28th and 29th। ये जो इवेंट है वो एस्पायर डोम के अंदर होगा, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स डोम, एंड क्लाइमेट कंट्रोल रनिंग एनवायरमेंट भी ऑफर करता है वो, तो सही रहेगा। रनर्स विल कम्पीट ऑन अ 4.8 किलोमीटर इंडोर ट्रैक। The event is open to all ages and fitness levels with over 500 participants expected. और जो categories हैं, men's race है, women's race है, एक open race है। और race का जो schedule है, Friday 28th August को men's race होने वाली है सुबह 7 से 10, then women's race होगी 10 से 11 और open race जो है वो 3 बजे से लेकर 8 बजे तक है। Saturday को August 29th को विमेंस रेस है 6:30 AM till 8 AM। रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुके हैं ऑलरेडी, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्ट लेना चाहते हैं इसमें, गो रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू द ऑफिशियल एस्पायर जोन पोर्टल। और फिलहाल सुनो ये कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फिरोज खान की आवाज में, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है,
1: कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास
1: द बिगेस्ट शॉपिंग स्प्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas. Lucas, world's favorite jeweler.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: सुनिधि चौहान की आवाज में अक्सर मूवीज सोनी है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर।
1: वेलनेस फिक्स।
0: देखो, हमारी बॉडी बहुत पहले ही नोटिस कर लेती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। हमें उसे नोटिस करने में वक्त लग जाता है और बॉडी कीप्स टेलिंग अस कि ब्रो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा स्लो डाउन कर ले। पर सुनने वाली बात तो ये हमारे लिए है नहीं ना, इस पे तो हम ध्यान देते ही नहीं है। सो आई एम गोना टेल यू अ फ्यू वेरी छोटे छोटे स्टेप जब भी आपको ओवर स्टिमुलेटेड, ओवरवेल्म्ड या फिर बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, उससे बचने के लिए। सो दिस वन मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं आप कर पाए। द डोर वे हैंग, ठीक है, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ स्टर्डी बार और 20-30 सेकेंड्स के लिए उससे हैंग करने का है। अब इससे क्या होगा, ये जो हैंगिंग है ना, ये आपके स्पाइनल को डीकम्प्रेस करेगी एंड इस वो हेल्प करेगा आपको टू रीगेन योर फोकस एंड मेंटल ओवरलोड को कम करेगा जी। देन द कोल्ड नेक रीसेट, 30-60 सेकेंड्स के लिए बैक ऑफ द नेक पे कोल्ड कंप्रेशन करो। इसकी वजह से जो ओवरवेल्म्ड माइंड है ना वो काम होगा। एंड द वॉइस ड्रॉप टेक्निक, एक सेंटेंस को धीरे और डीपर तरीके से बोलो, इससे आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो जाएगी और जो ओवर एक्टिव माइंड है जिसमें ऐसे 50 टैब्स खुले हुए हैं वो उसको उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम करने में हेल्प करेगा। सो दैट विल हेल्प यू। ट्राई दीज अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो ये छोटी सी चीज़ें हैं यार, आप उस वक्त में ट्राई कर सकते हैं। जब आप काम रहेंगे ना तो आप बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। दैट्स ऑल मेरी जान। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स राइफल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
1: नंबर 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव,
2: जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: That was softly for you in the voice of Karan Aujla only on Radio Olive 106.3 FM. Dinesh aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par aur gaana sunke yaad aaya ki kal maine latent ka latest episode dekha jisme Karan Aujla hai. Ji haan. Bas yahi batana tha. Baaki aap jaake dekh lena. But I wanted to talk about a really crazy business idea a woman had. Dekho, harmful gossip is okay. Like, you know, jisse aap kisi ko harm nahi kar rahe ho, that is still acceptable. Not right, justify to bilkul nahi kar rahe ho, but acceptable I would say. Lekin this woman in Colombia, bhai, inhone logo ki gossip bech ke business bana liya, do ghar khareed liye. Yes, so there was this woman, unka naam tha Miriam. And she was 67 और वो कोलंबिया में रहती थी एंड उन्होंने बहुत सालों तक यू नो वो देख रही हैं कि मेरे जो लोकेलिटी है वहाँ पे क्या हो रहा है और वो एक डायरी थी उसमें सब कुछ नोट करती थी लाइक शी इज़ ऑब्जर्विंग एवरी थिंग कि किसका ब्रेकअप हो गया है और किसके घर में लड़ाई हुई है कौन नई गाड़ी लेकर आया है किसने क्या किया है एवरी थिंग चुपचाप क्वाइटली वो बैठ के देखती थी ऑब्जर्व करती थी और अपनी डायरी में नोट कर लेती थी एंड जो उनके नेबर्स हैं वो उस डायरी को कहते थे गॉसिप नोटबुक सो बेसिकली दिस इज लेडी विसल डाउन पर लेडी विसल डाउन वहाँ फ्री में बांट रही थी ब्रिजटन में ये पैसे लेती थी एंड डिपेंडिंग ऑन द गॉसिप कि वो कितनी जूसी है और कितनी यू नो उसका लेवल क्या है उसके हिसाब से वो पैसे चार्ज करती थी एंड देन इट बिकेम अ बिजनेस फॉर हर पीपल वुड कम एंड पे कि यार मुझे उसके बारे में जानना है बताओ एंड शी वुड जस्ट टेल एंड पीपल विल पे और ऐसे करके दैट लेडी बॉट टू हाउसेस कैन यू इमेजिन दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोई हक नहीं है कि वो किसी और की बात है कि लोगों को बेचे बट स्टिल क्लेवर यार सही है मतलब है
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

मीका सिंह की आवाज में तमाशा मूवी से हीर तो बड़ी सैड है। हीर यहाँ पे रेफर किया जा रहा है आपकी कार को, क्यों बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर हीर सैड है, दैट इज योर कार इज सैड, तो उसको एक स्पा डे तो वो डिजर्व करती है ना, देना चाहिए आपको। एंड एनी वे यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक सो मच लव फॉर देयर कार्स। आई रिमेंबर आई यूज टू हैव अ फ्रेंड बैक व्हेन आई वाज इन मॉरिशस, तो ना उसने नई नई कार खरीदी एंड ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स यू नो वी वेंट आउट कि चलो ड्राइव पे जाएंगे एंड ऑल। भाई वो किसी चीज़ को टच ना करने दे अपनी कार में, नहीं तुम गंदे कर दोगे, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। एंड वो जो उसका ऑब्सेशन था अपनी कार को लेकर, उस बात पे हमने उसका इतना मजाक उड़ाया, बट दैट वाज वेरी एडमिरेबल आल्सो बिकॉज यू नो इट वाज हिज फर्स्ट कार, उसने खुद खरीदी है, वो उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि वो उसका पूरा पूरा ख्याल रखता है। और अगर सेम फीलिंग्स आपकी हैं तो ध्यान से सुनिए, वैल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस सलवा रोड पर जाइए, वहाँ पर अपनी कार को वो वाली केयर दीजिए जो कि वो डिजर्व करती है मेरी जान। वहाँ पे आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे, डिजिटल कार पासपोर्ट मिलेगा जिसमें सारी सर्विस हिस्ट्री जो है वो हैंडी हो जाएगी आपके लिए। आपको पता होगा कि कब क्या करवाया है, ठीक है। नंबर नोट करो, 7765595 4 7765 5 9 5 4। इसमें कॉल करो और बोलो कि मेरी जो हीर है वो सैड हो रही है, उसे थोड़ा स्पा की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, बताइए क्या ऑफर्स हैं और वो आपको बता देंगे। एंड ऑल्सो इफ़ यू गो एंड गेट योर ऑयल चेंज ओवर देयर तो आपको मिलेगा एक केयर।

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning। Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler। Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।
5: Commercial Bank, your

0: नींद चुराई मेरी इस न्यूज ने जो मैं आपको बताने वाली हूँ।
1: और ट्रेंड में क्या है, क्या है? What's trending?
0: You're listening to Radio 11.6.3 FM. Dinesha है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और फिलहाल यू नो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर जगह एक न्यूज वायरल हो रही है, दैट इज कि इंडिया में एक हस्बैंड वाइफ है, द वाइफ कुक्स कैफे टाइप्स का मील एकदम, पर 1000 रुपीज चार्ज करती है वो हर मील के। तो अगर उन्होंने एक दिन में 3 ऐसी कैफे वाली मील बनाकर दी अपने हस्बैंड को तो शील गेट 3000 रुपीज। एंड गुड, उनका डील बढ़िया चल रहा है, हैप्पी फॉर हर। बट जब मैंने उसे कैलकुलेट किया, थोड़ा मैथ किया, तो भाई ये तो बहुत महंगा हो रहा है। आप इससे तो रादर कैफे जाकर खा लो या फिर आप ऑर्डर कर लो, दैट वुड बी वे मोर चीपर देन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। आई थिंक शी माइट बी कुकिंग यू नो 2 or 3 मील्स इन अ मंथ, क्योंकि हर रोज तो पॉसिबल नहीं है हस्बैंड खुद खाना खाना छोड़ देगा। Would you do that if your, you know, partner cooks something very special for you? Would you be willing to pay them? क्योंकि वो मेहनत तो लगती है, देखो कुछ special बनाते हैं उसमें तो। क्या लगता है, आप करना चाहोगे? बताओ मुझे 3311-1063 पर। Stay tuned on Jio Bindaas.
2: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है।

मैंने प्यार क्यों किया मूवी से गाना आपने सुना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और ये रिमाइंडर है जी कि अगर नहीं किया है तो कर लो अब जी रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब यू नो टिकटॉक स्नैपचैट और वॉइस कास्ट की ऐप अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए रेडियो ऑलिव की ऐप अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए सब जगह फॉलो करने गए ऐप डाउनलोड करने गए सो दैट हम यू नो कनेक्टेड रहें आपको पता रहे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप ही के लिए तो कर रहे हैं यार सो अगर नहीं किया अभी तक फॉलो तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए वी कीप पोस्टिंग वीडियोज़ ओवर देयर यू नो बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग सो आप पार्टिसिपेट करें उसमें यू नो हम जो पोस्ट डाल रहे हैं उससे इंटरेक्ट करें और यू नो यू माइट विन समथिंग जी हाँ और इसी बात पे आपके लिए ये वाला गाना स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास मेरी जान

0: माँ, मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

बवाल मूवी से खूबसूरत गाना दिल से दिल तक ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर 9:50 हो चुका है क्लॉक में, मतलब कि मेरे जाने का वक्त है। अब मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। आप अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे। और अगर कुछ भी ऐसे छोटा मोटा इधर उधर हो गया ना तो स्ट्रेस नहीं लेने का, इट्स ओके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरी जान। सो टिल मारने का, इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, यू नो 3311106 पर कभी भी खुल के मैसेज कर सकते हैं आप, नहीं तो सोशल मीडिया पे मैसेज कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग, यू नो जिधर आप कंफर्टेबल हो उधर आ जाओ। कॉल करना है कॉल भी कर सकते हो 4444106 पर। कुछ ही देर में एक आशीष आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए। आप सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

नहीं मतलब बताओ, आप ही बताओ, कुमार सानू जी के अलावा कौन है जब आप 90s के गानों के बारे में सोचते हो, स्पेशली सैड गानों के बारे में सोचते हो या रोमांटिकली सैड गानों के बारे में सोचते हो तो उनका नाम आपके दिमाग में आता है? कुमार सानू जी के अलावा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं तो एटलीस्ट यार कोशिश करेंगे। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो यार देखो, आप भी मेरे लिए एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हो। अपना फोन उठाओ, उस पर डायल करो 3311063 और मुझे बस हाई हेलो गुड मॉर्निंग कुछ भी जो है मैसेज कर दो 3311063। अब क्या है यार, मेरा मंडे जो है ना वो आप मन वाला डे बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे ये वीक गुजरता है ना मैं वीक होती जाती हूँ, तो मुझे जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे पावर देने के लिए आप लोगों के मैसेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड उसके साथ साथ देखो यार अमेजिंग वाले गाने आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ मस्त है शो में, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी अमेजिंग चीजों पर हम बात करेंगे। बॉलीवुड में कौन सी नई मूवीज आने वाली है एंड कौन सी मूवीज जो है आप बैठ के देख सकते हो, रिकमेंडेशंस देने वाली हूँ, फैशन रिकमेंडेशंस आपको देने वाली हूँ, साथ में कतर में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे पहले एक गाना जो है वो सुन लेना चाहिए, पति पत्नी और वो दो से। सो गाना एंजॉय करके आइए, बागी आपकी कशिश के साथ, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: द बिगेस्ट शॉपिंग स्ट्रीम कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है. ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू. साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइजेस. तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है.
3: सफारी World Class Shopping Experience, Doha, Qatar.
4: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff. Radio 106.3, Jio Bindaas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: यार देखो, वैसे तो मेट्रो इन दिनों ये जो मूवी थी इसने सबको डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वो जो लाइफ इन अ मेट्रो जो पहले मूवी आई थी जिससे हमें इतनी सारी उम्मीदें थी, उसके बाद जब ये मूवी आई थी तो सबको जो है डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन एक चीज थी इस मूवी के बारे में जो सबको बहुत अच्छी लगी थी और वो थे पपॉन। पपॉन ने इस मूवी के बहुत सारे गाने गाए हैं एंड वो सारे ही गाने बहुत अमेजिंग है। उन्हीं में से एक गाना भी आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिफर। मैं हूं आपकी कजन शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम लोग। एंड अब देखिए यार, अगर हम बात करें मौसम की, तो आज जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली थी और मैंने आसमान की तरफ देखा था, तो मैं आसमान की तरफ देख पा रही थी। वरना क्या होता है कि सूरज चाचो इतनी तेज जो है वो शाइन मार रहे होते, चमक मार रहे होते कि मेरी आंखें ऐसी चकमक हो जाती हैं एंड मैं आंखें खोल ही नहीं पाती हूँ। एंड जब तक हम गाड़ी में नहीं बैठते तब तक मेरी आंखें जो है एकदम ऐसी चीन चाइनीज ही हो जाती हैं, ऐसे बंद करके मुझे चलना पड़ता है अपनी अंदाज के हिसाब से। लेकिन आज जो है बदली सी थी छाई हुई आसमान में, तो जो है दिख रहा था आसमान। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ऑफिस पहुंची, मौसम वापस वैसा ही हो गया जैसा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इस वक्त दोहा में जो है टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं कि हवा कितनी स्पीड से चलने वाली है, तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चलने वाली है हवा। एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 43 डिग्री ह्यूमिडिटी जो है वो मौसम को और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल बना देगी। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पास मैं हूँ और मेरे पास आप हो, तो कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आप इन्जॉय कर सकते हो। फिलहाल कजरा मोहब्बत वाला, ये गाना ऑफकोर्स आपने जो है सुना ही होगा। अब इसी को एक नए ट्विस्ट के साथ थोड़ा और कूल बनाकर जो है हम आपके लिए लेकर आए, सो स्टे ट्यून रहिए। एंड फिलहाल अनप्लग्ड वर्जन ऑफ कजरा मोहब्बत वाला इन्जॉय करके आइए। उसके बाद जरा बॉलीवुड की बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही हैं बॉलीवुड में जो अभी तक हमें नहीं पता थी।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: सो स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

धीरे धीरे करके ईशान अवस्थी बनती जा रही हूँ और किसी को रियलाइज भी नहीं हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए, ईशान अवस्थी में कैसे बन रही हूँ, नहीं मुझे जो है कोई भी ऐसी चीज उड़ते हुए नहीं दिख रही है और ना ही मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके जो है रियलाइज हो रहा है कि भाई अपन को जो है लोगों से बात करने में ऐसे पर्सनली इंटरेस्ट आता नहीं है। आप लोगों से मैं जितनी माइक के थ्रू बात कर लेती हूँ उतनी कर लेती हूँ, उसके बाद जैसी मैं बाहर जाती हूँ मुझसे ऐसे ज़्यादा इंटरेक्ट किया नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बात कर पाती हूँ 2 मिनट एक दूसरे के पास जो है ऐसे बैठने के बाद कि गर्मी बहुत हो गई है ना, ठीक है, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा खत्म। इसके बाद मैं कुछ बात ही नहीं कर पाती। सो अगर आपके पास स्मॉल टॉक करने के लिए कुछ आइडियाज हैं तो वो आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा 3311063 पर जो है मैसेज करके। फिलहाल जो है मैं आपको ये बता दूं कि यार बॉलीवुड की एक खबर जो है मैं आपके लिए लेकर आई थी। सो ये किसी मूवी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मतलब मूवी स्टार से रिलेटेड है। सो दीपिका पादुकोण एज यू ऑल नो दुआ की एक छोटा जो है भाई या बहन जो है वो आने वाला, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण जो है वो फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं अपने दूसरे बेबी के। एंड उसके लिए दीपिका पादुकोण ने जो है एक बहुत ही फनी स्टोरी जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, एंड इसके बाद इंटरनेट जो है वो सच में मतलब ऐसा हो गया है कि ओहो हो हर जगह दीपिका दीपिका दीपिका दीपिका दीपिका दीपिका। एंड रणवीर सिंह जो है वो अभी बाहर घूम रहे हैं एंड दीपिका पादुकोण जो है वो इस तरीके की वीडियोस जो है वो अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है यार कि कहीं ना कहीं हम सेलिब्रिटीज़ को ना काफ़ी बहुत एक ऊपर वाले ओहदे पे रख देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये भी तो मदरहुड इन्जॉय कर रही हैं, ये भी तो प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी, ये भी तो वो इनके अंदर भी तो वो जो है 30-40 साल की एक फीमेल है जो मतलब परेशान है या हो सकता है स्ट्रेस में होगी। सो ऐसी जब स्टोरीज कोई लगाता है ना पर्सनल टच देता है तो मुझे लगता है कि यार ये ज़्यादा अलग नहीं है, बस इनका काम जो है वो फिल्मों में काम करना है। जैसे आपका काम जो है वो हो सकता है कि कोई टीचर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई जो है मुझ जैसे आरजे होगा, हमारे जैसे ही तो होते हैं यार ये सेलिब्रिटीज भी, बस इन्हें हम सब जानते हैं। सो इसी बात पे जो है एक काम करते हैं कि दीपिका के लिए बहुत अच्छी विशेस जो है वो इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विश करते हैं, दुआएं करते हैं उनके लिए। एंड माई नेम इज खान मूवी से सजदा गाना जो है वो इंजॉय करते हैं। सो यार देखो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स में से है ये, एंड मतलब बहुत ही उम्दा गाना है ये। सो एक बार इस गाने को इंजॉय करो, उसके बाद ज़रा आने के बाद आपको भी अगर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी उपिंदास।

ये गाना ना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कोई चीज अगर आप मन से जो है शुरू कर दो, उसके बाद उसमें जो है जब लोग इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं तो वो चीज बहुत ग्रैंड बन सकती है। कोविड के टाइम पे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने जो है ये ट्रैक इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डाला था एंड उसके बाद ही इतना फेमस हो गया कि बॉलीवुड में इसे जगह मिल गई। और ये सिर्फ इकलौता ऐसा गाना नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाने, बहुत सारे इंडी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो है ऐसा मौका मिला हुआ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पे आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। सो देखिए, वक्त हो गया है आपके स्ट्रेस को चाचा बाय बाय बोलने का। अब देखो यार, होता क्या है ना कि बॉलीवुड ने हमें स्ट्रेस से जो है जूझने के, हमें स्ट्रेस से बाहर निकलने के काफ़ी सारे तरीके बताए हुए हैं ऑलरेडी। मतलब जब भी बॉलीवुड मूवी में किसी को पैनिक अटैक आ रहा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। अब इसमें से सही कौन सी चीज़ें हैं, गलत कौन सी चीज़ें हैं, हम कई बार आकर इस पर भी बातचीत करते हैं। सो आज मैंने जो बॉलीवुड में जब किसी भी एक्टर को गुस्सा आ रहा होता है या वो एंशियस होता है तो जो तरीका वो अपनाते हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आपको जब भी एंजाइटी हो या जब भी स्ट्रेस हो, आपको बस बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी आपको उल्टी काउंटिंग करनी है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे। एंड ये आप जितना पहले से कर सकते हैं उतना पहले से कीजिए, आपका ब्रेन जो है ये करने में बिजी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो कम लेगा। देखो ऐसे ही कुछ, मतलब ये सुनने में ना तरीके लगते हैं क्या स्टूपिड है, उल्टी काउंटिंग करने से जो है क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इट वर्क, साइंटिफिकली प्रूवन है। अभी मैं जस्ट पढ़कर आ रही हूँ इसको कि इसके पीछे जो है काफ़ी सारी रिसर्च करी गई है एंड ये बाकी जितने तरीके हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो ईजी भी है एंड आप इजीली कर सकते हो एंड असरदार भी ज़्यादा है। सो जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप कोई सेलिब्रिटी यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने का एक्ट कर सकते हैं, आप कोई फनी आवाज़ में बात कर सकते हैं, आप बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये सब आप अकेले में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पब्लिक गैदरिंग में हैं और आपको यार अनईजी सा फील हो रहा है तो क्या किया जाए, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग अपने मन में कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एंड बाकी मैं तो ये कहूँगी आप अपनी लाइफस्टाइल जो है थोड़ी सी मेंटेन करके रखिए तो अपने आप स्ट्रेस जो है वो कम होगा एंड कॉर्टिसोल लेवल जो है वो भी मेंटेन रहेगा। इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुन लेना चाहिए जिससे भी स्ट्रेस कम होता है। चांद मेरा दिल से गाना आ रहा है आपके रेडियो स्टेशन पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कसूस के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:08, दैट इज 11:08. स्टे ट्यून्ड जियो विंदास.
2: रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे.
3: हर कमेडियन के पास जोक्स होते हैं. इस कमेडियन के पास पूरी दुनिया थी, एक ही चेहरा, लेकिन कभी गुत्थी, कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो कभी रिंकू भाभी. और कमाल की बात, लोगों ने एक्टर को नहीं उनके कैरेक्टर्स को अपना बना लिया. आज बर्थडे है उसी इंसान का जो स्क्रीन पर आता नहीं, स्क्रीन पर छा जाता है.

0: कल मेरे भाई मूवी से उन्होंने कहा मोरल का याग्निक जी की आवाज में ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कजिन जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। एंड यार मतलब धीरे धीरे ना ये जो चैटिंग का सीन है ये काफ़ी बदलता जा रहा है। मतलब लोग जो है पहले इमोजीज यूज़ नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि यार किसी सीरियस कॉन्वर्जेशन में अगर आप इमोजी यूज़ करोगे तो आप बहुत अनसीरियस लगोगे, लोग आपको आपकी बातों को जो है तवज्जो ही नहीं देंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर आप कोई फन चीज़ बोल रहे हो और आपने उसमें इमोजी नहीं लगाया तो आप जो है ऐसा लगता है कि यार आप गुस्से में बोल रहे हो। सो इमोजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं। एंड अब कुछ जेंजीज के हिसाब से कुछ इमोजीज ऐसे भी हो गए हैं जिन्हें आप बिल्कुल ही नहीं भेज सकते, जैसे थम्स अप वाला इमोजी है वो तो मुझे ही नहीं पसंद है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं ये थम अप वाला इमोजी जो अगर आप भेजोगे तो हमें एंजाइटी होगी, हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन अब मेजर इमोजीज का जो मतलब है वो भी बदल गया है। यानी आपने ये तो सुना होगा कि जेंजीज ने जो क्राइंग वाला इमोजी यानी जो रोने वाला इमोजी है उसको हंसने वाला इमोजी बदल दिया है। यानी अगर अब आपको बहुत हंसी आ रही हो, मेरा जोक आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप हंसने वाला इमोजी जो है वो भेजने की जगह रोने वाला इमोजी मुझे भेजेंगे। और ये था अभी पिछले कुछ महीनों तक, लेकिन अब ये भी बदल चुका है। अब अगर आपको बहुत हंसी आ रही है किसी चीज़ पे तो आप डॉल्फिन वाला इमोजी भेज सकते हैं, क्योंकि डॉल्फिन की आवाज़ अपेरेंटली ऐसी लगती है जैसे कोई जो है वो बहुत अपना एकदम लिवर किडनी बाहर निकाल के जो है हंस रहा है। सो आप बताइए ऐसा कौन सा इमोजी है जो आपको काफ़ी अनोइंग लगता है, या फिर आपके हिसाब से इस इमोजी का मतलब अक्सर गलत समझ लेते हैं लोग। इमोजीज़ के लिए बात करें बेसिकली हम, तो आप इमोजीज से जो भी आपको लगता है आपका फेवरेट इमोजी अगर आपको भेजना है तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं। बाकी अमेजिंग वाला गाना जो है वो आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उससे पहले नंबर जो है वो हमारा लिख लीजिए 3311063, इस पर आके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिए। इंतजार कर रही हूँ मैं आपके मैसेजेस का। फिलहाल मैं भी अपना फेवरेट इमोजी जरा ढूंढ के आती हूँ कि कौन सा इमोजी मैं सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: मैं हूँ आपकी कशिश, एंजॉय करते रहिए मेरे साथ।

अजनबी मूवी से फुल ऑन वाइबी के साथ दिल डूबा गाना जो है वो एंजॉय किया हमने 106.3 रेडियो पर। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। एंड देखिए यार, हम बात कर रहे थे इमोजीज की, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की। अब जेंजीज ने जो है एक नया मतलब इन्वेंशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, जहाँ पर जब उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है तो वो डॉल्फिन वाला इमोजी जो है वो चैट पे भेज देते हैं, क्योंकि अपेरेंटली डॉल्फिन की आवाज जो है वो किसी के हंसने जैसी है। आप अभी जाकर जो है गूगल पे चेक कर सकते हैं, मतलब मैं आपको सुना सकती थी, लेकिन आप थोड़ा सा जाके ये मेहनत करेंगे तो आप ही को ऐसा लगेगा कि ओ या कशिश, बात तो देखो आप सही बोल रहे थे। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने भी पूछी थी आपसे कि ऐसे कौन से इमोजीज हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। सो मैं जो है, मुझे रियलाइज़ हुआ अभी कि मैं वो स्टार स्टार वाला इमोजी जो होता है ना, एक शाइनिंग वाला इमोजी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और हाथों से जो हार्ट बनाते हैं वो वाला इमोजी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड हर बात पे मैं ही इमोजी भेज देती हूँ, चाहे मेरा ऑफिस का ग्रुप हो, चाहे मेरी फैमिली का ग्रुप हो, चाहे मैं किसी रैंडम इंसान से बात कर रही हूँ, शाइनी शाइनी भेज देती हूँ मैं। मतलब थम्स अप भेजने की जगह हमेशा वो शाइनी शाइनी वाला जो स्टार है वो वाला इमोजी भेजती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, थम्स अप से ना बहुत बैड वाइब्स आती हैं, तो उससे ये वाला बढ़िया रहेगा। आप लोगों से भी पूछा था कि आप लोगों का फेवरेट इमोजी कौन सा है, तो जो इमोजी मुझे अभी चैट पे दिख रहा है ये इमोजी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। वो जो एक स्माइली फेस होता है ना, एकदम बेसिक वाला जिसमें सिर्फ एक स्माइल होती है और दो आंखें होती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना सा लगता है। एंड कहीं ना कहीं वो जो है आजकल जेंजीज ने जो है इसको सरकास्टिक होने का एक यू नो एक इंडिकेशन जो है वो बना दिया है, कि जब भी कोई सरकास्टिक हो रहा होता है या उसे झूठ मूठ का हंसना हुआ दिखाना होता है तो वो ये इमोजी भेज देता है। देखिए बहुत डीप मीनिंग है इमोजीज के पीछे, ऐसे ही कुछ भी मत भेज दीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल तुम मिले गाना जो है तुम मिले मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: चलो जी, आप लोग इतने प्यार से कह रहे हो तो कहीं नहीं जाऊंगी, इतना जिद नहीं करूंगी। एक और घंटे अभी आपके साथ बिताना है मुझे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, कल जो है हम फ्रेंडशिप्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब मैंने आपको कहा था कि यार वैसे तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे भी मना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है आदत है अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप्स डे मनाने की, इसलिए कुछ मूवी आपको रिकमेंड की थी मैंने जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो। लेकिन माय बैड, एक मूवी थी जो मैं भूल गई थी एंड उस मूवी का नाम है काय पोचे, जो मैं आज आपको रिकमेंड करने के लिए आ गई हूँ। डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने ये मूवी बनाई थी, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, अमित सूद, इन सब ने ये मूवी जो है की है। चेतन भगत की जो बुक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उससे इंस्पायर्ड है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आपको ऐसा लगेगा यार कि भाई ये तो मेरी कहानी है, तो एक बार जाकर काय पोचे मूवी जरूर से देखो एंड अमेजिंग वाले गाने भी आपको इस मूवी में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो

ये कनिका कपूर जी तो मेरे दिल की बात ही कह रही है, छिल गए नैना। ऑफ कोर्स जब रात रात भर बैठ के सीरीजें देखेंगे तो ऑफ कोर्स नैना तो छीलेंगे ही ना, पर नींद भी पूरी नहीं होगी, दिमाग भी खराब हो जाएगा। सो यू एंड सो मी, वेलकम जी, गुड आफ्टरनून हो गया है गाइज, आफ्टरनून हो गया है स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त 12:05 हो रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून हो चुका है एंड आपके लिए मैं शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाते हैं। और अगर आपको भी फैशन का बहुत ज्यादा शौक है मेरी तरह और आपको जानना है कि यार इस वक्त इन ट्रेंड क्या है, सो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि यार फैशन ना बिल्कुल हिस्ट्री की तरह होता है, वो अपने आप को दोहराता है। सो एक टाइम पर पर्ल्स जो है यानी जो मोती है वाइट वाले जो पर्ल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे एंड उसे लग्जरी का एक सिंबल माना जाता था एंड अभी वो लग्जरी का सिंबल जो है वो वापस आ चुका है, लेकिन उसे पहनने का तरीका बदल चुका है। पहले लोग जो है एक डेलिकेट सा पर्ल नेकलेस पहना करते थे या रिंग में जो है पर्ल लगा लिया करते थे, आजकल फ़ोन कवर में पर्ल से डेकोरेशन करने का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। लोग DIY कर रहे हैं, हाफ कट पर्ल्स को अपने शूज़ पे लगा रहे हैं एंड फ़ोन कवर पे लगा रहे हैं, बैग पे लगा रहे हैं, यानी नेकलेस और रिंग छोड़कर हर पॉसिबल जगह पर जो है पर्ल्स का इस्तेमाल हो रहा है। एंड एक मतलब इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा था, उन्होंने पूरी की पूरी ड्रेस ही पर्ल से बना दी थी। यस, एंड कुछ साल पहले हमने जो है एक इवेंट पर आलिया भट्ट को भी ये पहने हुए देखा था। सो उसके बाद से काफ़ी इन ट्रेंड है एंड बीच में चला जाता है एंड अभी वापस आ चुका है। सो समर अप्रोप्रिएट ज्वेलरी अगर आप जो है वो देख रहे हैं कि यार गोल्डन सिल्वर कलर की ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर हम पहनते गर्मी में स्वेट के साथ जो है मिलकर वो रिएक्ट करती है स्किन पे, सो पर्ल जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो डिसेंट भी दिखता है एंड समर में काफ़ी बेटर लगता है। सो पर्ल इज़ अ नाइस चॉइस अगर आप एक यू नो एक्सेसरी रहे हो अपने लिए, बाकी फोन कवर्स एंड घड़ियों में भी आप पर्ल जो है वो इंक्लूड होते हुए अभी देखने वाले हो। सो देखिए वेलकम टू द जंगल का एक अमेजिंग वाला गाना मैं आपको सुना रही हूँ, आपको जो है फैशन के बारे में और अगर कोई ऐसे फैक्ट्स पता चल रहे हैं तो आप 3311063 पर मुझे बता सकते हैं। फिलहाल ये गाना इंजॉय करके आइए, उसके बाद जरा आपके लिए एक जो खबर मैं लेकर आई हूँ वो आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukh Wakif Alkhor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप

0: वाह जी वाह बी पराग जी, कभी कभी तो आपकी आवाज में इतना दर्द लगता है मुझे कि मुझे लगता है कि किसी ने आपकी उंगली कहीं दरवाजे में तो नहीं फंसा दी है जो आप इतने दर्द में गाने गा रहे हैं। मेरी बातों पे ना ज्यादा सीरियस होके ध्यान मत दिया कीजिए, जब तक मैं ये ना बोलूँ कि मैं बहुत सीरियस हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कसूसन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखिए हम बातचीत कर रहे हैं। अब मैं ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो आप लोग मुझसे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत थी, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डग्गा बजे। इसका मतलब होता है कि जो काम करने के लिए जिसको ट्रेनिंग मिली है, जो जिस चीज जिस इंसान का काम है उसको ही करना चाहिए। अब ये बात रेमो डिसूजा जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। रेमो डिसूजा जी एकदम बढ़िया जो है डांस कोरियोग्राफर हैं, वो टीवी शो के जज हैं, जब तक ये जो है ये सब काम कर रहे थे तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब से इन्होंने कदम रखी है डायरेक्शन में तब से सब कुछ खराब ही हो रहा है। पता नहीं क्यों एक्शन कराना चाहते हैं ये। फ्लाइंग जट मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आंखों को निकाल के धो दूं, पर कोई बात नहीं। अब टाइगर श्रॉफ जी के साथ इनकी एक और मूवी जो है वो आने वाली है, नुसरत जो है भनोट और टाइगर श्रॉफ इनकी एक मूवी जो है वो आने वाली है रिसेंटली, इसको एक डांस एक्शन मूवी आप कह सकते हो। एंड ऑब्वियसली देखो टाइगर श्रॉफ है तो कोई मूवी अगर डांस वाली और एक्शन वाली नहीं होगी वो उन्हें भी डांस और एक्शन वाली बना देंगे। एंड फ्लाइंग जट की इतने बड़े फेलियर के बाद मुझे नहीं लगा था कि ये जो डायरेक्टर एक्टर कॉम्बो है ये अग्री करेगा एक और नई फिल्म के लिए। एंड नुसरत इतनी अच्छी एक्टर होने के बाद भी इसके लिए उन्होंने हाँ कह दिया है। आई डोंट नो क्या सोच रही हैं, एंड हो सकता है हम गलत सोच रहे हो एंड इस बार फॉर अ चेंज स्टोरी अलग हो या कुछ डिफरेंट लेकर आए। सो लेट्स होप बॉलीवुड जो है वो अपना एसेंस जो है वो बरकरार रखे। बाकी आतिफ असलम जी की आवाज़ में मेरी कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक है आपके रेडियो सेट्स पर, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर है, इसे एंजॉय करके जरा वापस लौट के आइए, फिर आपको एक बहुत काम की बात बतानी है जो आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेनी है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

किसका गाना सुनेगा? क्रिस का। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो है ये ऐसा क्यों कहा, तो आपको जो है मीम्स देखने की काफी जरूरत है। आप जो है मीम्स देखिए, आजकल लोग जो है वो मीम की भाषा में ही तो बात करते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो आरिफ पर, मैं हूँ आपकी गजल्स एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लाइफ मस्त है जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। और गाइज यार, एक सच्ची बात बताओ मुझे, लास्ट बार कब आपने अपनी कार को जो है पैम्पर किया था? मतलब ये कार जो है आपको पूरा ख्याल रखती है, आपको जहाँ जाना होता है वहाँ पर आपको लेकर जाती है, ऑफिस से लेकर जिम से लेकर सुपर मार्केट, लॉन्ग ड्राइव, हर चीज़ में आपका साथ देती है, लेकिन आप इस कार को जो है उतना ड्यू क्रेडिट नहीं देते हो। रोज गाड़ी को दौड़ाते हो लेकिन उसको जो है केयर देना भूल जाते हो। तो ये वक्त है आपकी कार को वो प्यार जो है वापस करने का जो वो डिजर्व करती है। सो स्ट्रेट अवे पहुंचो वैल्वलिन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस सलवा रोड पर, जहां पर आपको स्टैंडर्ड मेंटेनेंस के साथ जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। 150 ईयर्स का जो है ग्लोबल ट्रस्ट यहां पर आपको मिलेगा एंड जेन्युइन वैल्वलिन प्रोडक्ट्स के साथ प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स भी मिलेंगे। और सबसे कूल चीज़ तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट आपको मिलेगा। इससे आपकी गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहने वाली है, यानी नो पेपर वर्क और नो मम्मी की डांट खाना कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ रख के भूल जाते हो। सो देखो यार, सबसे बेस्ट चीज है ये। सो अभी अपनी कार को लेकर जो है प्रीमियम केयर के लिए पहुंच जाओ यहाँ पर सलवा रोड पर। एंड आप जो है एक नंबर मैं बता रही हूँ, उस पर कॉल भी कर सकते हो, 7765-5954। एंड अमेजिंग प्राइजेस जो है, गुडीज जो है वो भी आपके पास जीतने का मौका है। 7765-5954 इज द नंबर। फिलहाल उड़ी गाना जो है आपके रेडियो सेट पर इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए ओपन दस।

आशीष कौर और गुरु रंधावा की आवाज में ये ट्रैक हमने एंजॉय किया जुग जुग जियो मूवी से। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आप मेरे साथ लाइफ मस्त है शो जो है वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब जो है मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो चला है क्योंकि मैं जाऊँगी तभी तो कल वापस लौट कर आऊँगी। एंड क्या है ना यार, ये मौसम जैसा हो रहा है ना इसके बाद पता नहीं क्यों कुछ कुछ सा हो रहा है, मतलब तबीयत ना ऐसा लग रहा है कि जिससे ख़राब सी हो रही है। अब आप लोगों को तो मैं ये जो है ज्ञान दे देती हूँ कि पानी पीते रहो, एकदम से जो है धूप में मत जाना एंड सीधे से एसी में मत आना, बीच में रुक जाना, लेकिन खुद ये सब नहीं करती हूँ और इसके वजह से ना थोड़ी सी फीवरिश सी फीलिंग जो है वो आने लग जाती है। सो मैं अभी जाऊँगी गर्मा गर्म जो है चाय पीऊँगी, अच्छे से पानी पीऊँगी, कल तक बढ़िया हो जाऊँगी एंड फिर आऊँगी आप लोगों की लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए। सो देखिए 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि आज का शो कैसा लगा, अगर आपकी कोई फीडबैक्स है तो, या फिर आपके पास कुछ अमेजिंग चटपटी वाली खबरें हैं तो बॉलीवुड से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, यार स्पेशली फैशन की अगर आप कोई बातचीत डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 3311063 पर। बाकी रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर भी सारे आरजेज जो है वो बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, सो उस पर भी आकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमसे बातचीत जारी रख सकते हैं। वहां पर आपको सभी आरजेस जो है उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी, तो और आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल करते रहते हैं हम, चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट हो, चाहे वो यू नो फनी कंटेंट हो, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, यानी एक फुल पैकेज अगर आपको चाहिए तो वो आपको रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएगा। तो यार देरी किस बात की, जल्दी से जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, YouTube पे भी आपको फुल सेलिब्रिटी इंटरव्यूज जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो जाकर देखो ना यार, देरी किस बात की है। बाकी अगर कोई कसर रह जाए बातचीत में तो 3311063 पर आकर आप हमसे बातचीत जो है वो कर सकते हैं डिटेल में, एकदम पर्सनली। अब देखिए मैं यहाँ से चलती हूँ, आपको वही बोलूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, सनस्क्रीन लगाना ना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल ऑल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। एंड ये जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग इस वक्त बना हुआ है एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो लगातार 3-4 पोस्ट इसी गाने पे मैंने की हुई है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्रमोशनल सॉन्ग जो है इसे कहा जा रहा था, बरसात गाने का नाम है बंजारे मूवी का, सो इसे इंजॉय करो। बंजारों का ये गाना है, बैरन अगर आपने गाना सुना है सो वो भी इसी डुओ का था, सो इसे इंजॉय करो और बाकी आपकी कोशिश के साथ स्टे ट्यून रहो, कहते रहो जियो बिंदास।

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।

0: Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: हर कमेडियन के पास जोक्स होते हैं। इस कमेडियन के पास पूरी दुनिया थी, एक ही चेहरा, लेकिन कभी गुत्थी, कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो कभी रिंकू भाभी। और कमाल की बात, लोगों ने एक्टर को नहीं उनके कैरेक्टर्स को अपना बना लिया। आज बर्थडे है उसी इंसान का जो स्क्रीन पर आता नहीं, स्क्रीन पर छा जाता है।
3: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
4: Hi everyone, this is Benny Deol here.
5: Olive Radio 106.3.
4: Jio Bindas.

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to

0: शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3rd August लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स रैफल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहाँ पे ऑलिव रिचार्ज को किक स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बांध रखी है तो कस कर बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जर्नी हम शुरू करने वाले हैं जहाँ पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बताते हुए, यही बोलते हुए, आपके मैसेज का इंतजार करते हुए जरा शो को किक स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: यार एक बहुत ही प्यारा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो गाना है अज दिन चढ़े या तेरे रंग भर का, ठीक है। लव आजकल मूवी का गाना है ये, और वो मूवी के निकले 17 साल हो चुके हैं मगर अभी भी उस मूवी का मैसेज जो है रेलेवेंट है। तो मूवी जिन्होंने देखी उन्हें पता है कि मूवी में जो है प्यार के बारे में बात की गई है और दो डिफरेंट जनरेशन में प्यार किस तरीके से लोग करते हैं उसको दर्शाया गया है। बट मूवी का जो कोर मैसेज है 17 साल के बाद भी काफी रेलेवेंट है, और कोर मैसेज यही है कि प्यार हर जनरेशन में अलग तरीके से होता होगा मगर उसकी फीलिंग बिल्कुल सिमिलर है। लव माइट लुक डिफरेंट इन एवरी जनरेशन बट द फीलिंग इज ऑलवेज द सेम। अगर आपने लव आजकल देखी है तो एक थम्स अप दीजिए मुझे 3311063 पर, और यही बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे रणबीर कपूर की एक दुविधा के बारे में हम बात करना चाहते हैं। उनके हिट मूवीज आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो वेकअप सिड हो, चाहे वो रॉकस्टार हो, चाहे वो अजब प्रेम की गजब कहानी हो, इन सब में किसी ना किसी पॉइंट में उन्हें घर से निकाल दिया गया है। जी हाँ, मुझे लगता है घर से निकालने के बाद ही उनके लाइफ में भी एक चेंज आता है। वैसे एक पॉइंट में मैं भी अपने घर से निकलने ही सोच रहा था, मगर जेब में जब मैंने सिर्फ 20 रुपए देखे तो मैंने सोचा ईगो हटाओ साइड में, पेट भरना होता है तो घर में ही रहे हम। बट या दैट्स अनदर स्टोरी। मगर ये एक पैटर्न मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया में देखा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ यार, लोग कितने कीन तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ना। और अगर आपने ऐसा कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया है किसी भी मूवी में तो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

0: यार ख्याल रखना एक आर्ट है और इस मामले में वैल्वोलिन एएमटीसी जो है एक आर्टिस्ट है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी को एक ट्रस्टेड केयर मिले, वो केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है, तो सीधा जाइए वैल्वोलिन एएमटीसी जो सलवा रोड पर है, वहां पे क्विक सर्विस जो है आपको मिल सकती है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि वहां पे जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी को वो ट्रस्ट, वो केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। एंड एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं उनसे और बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765 5954, नंबर है 7765 5954। आप आज ही कॉल कर सकते हैं, उन्हें विजिट भी कर सकते हैं वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड पर। एंड कैच ये है कि वहां जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया वैल्वोलिन का मर्चेंडाइज भी मिलेगा। तो जाने इंतजार किस बात का है, आज ही जाइए वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड पर। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास
1: द बिगेस्ट शॉपिंग स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

शॉपिंग स्प्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे
1: स्टोरी ऑफ द डे। हर कमेडियन के पास जोक्स होते हैं। इस कमेडियन के पास पूरी दुनिया थी, एक ही चेहरा, लेकिन कभी गुत्थी, कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो कभी रिंकू भाभी। और कमाल की बात, लोगों ने एक्टर को नहीं उनके कैरेक्टर्स को अपना बना लिया। आज बर्थडे है उसी इंसान का जो स्क्रीन पर आता नहीं, स्क्रीन पर छा जाता है।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
5: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
4: ओलिव रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई मैं एक चीज सोच रहा था, देखिए स्पाइडरमैन का नया मूवी जो है आया है, और स्पाइडरमैन के जो कैरेक्टर को जितने भी एक्टर्स ने प्ले किया है, टॉबी मैगवायर हो, एंड्रयू गारफील्ड हो, या फिर अभी टॉम हॉलैंड हो, सब ने काफी अच्छे से किया है। बट मैं तो भाई टॉबी मैगवायर का फैन हूँ, ओजी स्पाइडरमैन का फैन हूँ। मगर मेरे मन में ना एक सवाल आया ऐसे, अगर कोई इंडियन एक्टर स्पाइडरमैन का रोल करता तो कौन जचता उसमें? मेरे मन में दो ऑप्शंस हैं, एक है अक्षय कुमार ऑब्वियसली डा, और दूसरा है टाइगर श्रॉफ। बट आपको क्या लगता है कौन स्पाइडरमैन का रोल पुल ऑफ कर सकता है बढ़िया तरीके से इंडियन एक्टर्स में से, बताइए मुझे 3311106 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कुछ दिन पहले जब अजिंक्य रहाणे का वीडियो देखा मैंने, जब वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे हर फॉर्मेट में, मुझे सही में बहुत बुरा लगा। और मुझे कई बार लगा कि यार बीसीसीआई ना कुछ प्लेयर्स के साथ थोड़ा गलत करती है। और आई थिंक बीसीसीआई को एक वन ऑफ टेस्ट मैच लगाना चाहिए कुछ प्लेयर्स के लिए, उनको एक फेयरवेल मैच देने के लिए। और एक लिस्ट है, मैंने देखी थी, ये लिस्ट जो है हम ओपन रख सकते हैं। आपको भी जो नाम लगता है ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट में है मुरली विजय का नाम, रोहित शर्मा का नाम, पुजारा का नाम, कोहली का नाम, रहाणे का नाम, रिद्धिमान साहा, जडेजा, अश्विन, उमेश यादव, शामी, ईशान शर्मा, इन सब के लिए एक वन ऑफ टेस्ट मैच रखना चाहिए उनके फेयरवेल के लिए। आपको क्या लगता है इस लिस्ट में और कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास
1: द बिगेस्ट शॉपिंग स्प्री इन कतर सफारी हाइपर मार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।

0: से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो वेल्वरीन एएमटीसी को मना नहीं कर सकते। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बता दूं कि भाई वेल्वरीन एएमटीसी जो सलवा रोड पर है, वहां पे आप प्रीमियम क्विक सर्विस जो है करवा सकते हैं अपने कार का, जहां पे आपको एक्सपर्ट केयर मिनटों में मिल जाएगी। और एक्सपर्ट केयर की अगर हम बात करें तो वहां पे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ जेन्युइन वेल्वरीन ल्यूब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी को वो ट्रस्ट और केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। भाई मैं एक नंबर बता देता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करिए और बात करिए और बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदीप भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। नंबर है 7765-5954, 7765-5954। और वहां पे जाके आप अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वेल्वरीन का मर्चेंडाइज भी मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, आज ही कॉल कीजिए, आज ही जाइए वेल्वरीन एएमटीसी सलवा रोड पर। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: शॉपिंग स्प्री इन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: हाय, दिस इज एयर अमान। लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव।
4: जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: HSR is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: बताना चाहूंगा कि सलमान खान की ट्वीट में अगला सेंटेंस, अगला वर्ड क्या आने वाला है ये कोई नहीं जानता भाई, इसका आइडिया किसी को भी नहीं है। और उसका एक एग्जांपल हमने देखा जब संजू बाबा के लिए सल्लू भाई ने एक ट्वीट डाला था, एक पोस्ट डाला था, मतलब भाई इतना रैंडम मगर इतना प्यारा, मजा आ गया वो पढ़ के। और इससे जब हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि भाई सलमान का एक ऑरा, एक स्वैग अलग है। मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई 2000s के टाइम पे या फिर अर्ली 90s के टाइम पे जब सलमान आए थे इंडस्ट्री में, तो उनका जो एक चार्म था, उनका एक जो एक अपील था, वो मुझे लगता नहीं कि किसी भी एक्टर का था उस टाइम पे। ना आमिर खान का था, ना शाहरुख खान का था, ना सैफ अली खान का था। सलमान खान तब भी एकदम अलग, अब भी एकदम अलग। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना भाई बने। और ये बात बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
0: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold.

यार अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो जाने क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए radioolive.qa और फॉलो बटन दबाइए एक बार। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आप हमारे सोशल मीडिया पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो कहीं पे भी हो दुनिया में, उनको आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके। तो सिर्फ गाड़ी में बैठ के रेडियो सुनना अभी उतना मजा नहीं आएगा, कहीं पे भी हो, घर पे हो, बाहर हो, वॉक पे हो, आप कहीं पे भी हमें सुन सकते हैं, इस जर्नी में हमारे साथ आ सकते हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में से। तो यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टेशन क्लॉक में 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो गए, पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी वक्त निकला। मगर कोई गल नहीं जी, फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे कल दोपहर को, चलते चलते तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: स्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स रैफल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: रानी देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

रब जाने की हो ही जाता है, कभी कभी सब समझना जरूरी नहीं होता, अच्छा होता है जितना ना समझे। ओए क्या बात कर दी यार मैंने। समझदारी वाली बातें जब मैं करने लग जाती हूँ, कभी कभी जब मेरे मुंह से ऐसी समझदारी वाली बात निकलती है ना, तो मेरे को खुद भी शक होने लग जाता है। और बताओ क्या हाल चाल है आपके, कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311063 पे भेज दो मेरे को व्हाट्सएप करके। दीवाना आया ना, दीवानी जरूर आ गया, क्योंकि और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है? एक नंबर माहौल जो है सेट होने वाला है, क्योंकि 4 घंटे में भी अब रैया 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ, तो आपको भी कहीं नहीं जाना है, जहां जाना जाओ कोई चक्कर नहीं है, बट मैं साथ साथ होनी चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी में, चाहे आपकी एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन के थ्रू।

0: शॉपिंग स्ट्रीम कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold.

0: चांदनी बेबी। चांदनी नहीं है यहाँ पे, सिमरन कौर है। और सर दसवीं की हाल चाल है थोड़ी लाइफ। तो फाइनली मैंने मुसाफिर कैफे जो है वो देख ली, और मुसाफिर कैफे देख के मुझे लिटरली बहुत मजा आया। जितनी हाइप थी ना वो वर्थ है यार। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। बहुत सारे लोग जो बुक पढ़ते हैं उन्होंने जो बुक पढ़ी है वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट है, मतलब जो एंड होता है या बीच में जो भी चल रहा है वो डिफरेंट है। लेकिन मैंने बुक नहीं पढ़ी है, तो मेरे लिए ये स्टोरी बड़ी ही मजेदार है। सो अगर आपने अभी तक मुसाफिर कैफे ऑन नेटफ्लिक्स नहीं देखी है तो क्या देखा यार, देख लीजिए। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास रेडियो ओलिव पे स्टोरी ऑफ द डे
1: हर कमेडियन के पास जोक्स होते हैं। इस कमेडियन के पास पूरी दुनिया थी, एक ही चेहरा, लेकिन कभी गुत्थी, कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो कभी रिंकू भाभी। और कमाल की बात, लोगों ने एक्टर को नहीं उनके कैरेक्टर्स को अपना बना लिया। आज बर्थडे है उसी इंसान का जो स्क्रीन पर आता नहीं, स्क्रीन पर छा जाता है।

0: रूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
0: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
1: कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, करामा।
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
0: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया, बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: वैसे बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो वायरल हो रही है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला है अपने कतर में जितने भी ट्रैवलर्स हैं, हम सबको आदत होती है ना अपने बोर्डिंग पास की फोटो ऐसी करके अपने पासपोर्ट के साथ हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो अवॉइड करो क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो प्रिंटेड QR कोड होता है, बार कोड्स होते हैं, इजीली स्कैन हो सकता है जो लोग आपको ट्रैक करना चाह रहे हैं, जो भी है आपकी पर्सनल डिटेल्स एक मिनट से पहले, एक सेकंड से पहले जो है वो आ सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप ये जो अपना ट्रैवल करते टाइम बोर्डिंग पास की फोटो जो है वो शेयर कर रहे हो वो ना करो, क्योंकि प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड जब आप स्पेशली ट्रैवल करते हो और आप अकेले होते हो या फैमिली के साथ होते हो, आपको किसी को नहीं बताना यार डिटेल्स, है ना, वो चीजें नहीं पता लगनी चाहिए, तो थोड़ी चीजें पर्सनल रखो। बट या ये बारकोड एंड ऑल, कोई QR स्कैन कर ले और सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाए वो नहीं होना चाहिए।
1: आपकी खिदमत में ठीक है जी, अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ जबरदस्त इवनिंग। मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

घसूता और आपकी कार भी तो घड़ी घसूती है और ऐसी रहे वो भाई। बिल्कुल आपकी कार जो है वो घड़ी घसूती रहे जिस तरह से आपने नई ली थी। जो भी जितने भी कार लवर है जिनके पास गाड़ियां हैं वो सब चाहते हैं कि भाई उनकी गाड़ी नई सी रहे और कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जरा सी स्पेशली जब गर्मी के टाइम पे है ना, क्योंकि आप जब अपनी गाड़ी में बैठते हो इतनी सारी ऑलरेडी गाड़ी आपकी गर्म हो जाती है और आप चाहते हो कि यार आपकी गाड़ी जो एकदम बढ़िया रहे, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो उसकी प्रॉब्लम आने से पहले ही आप अपनी कार को प्रीमियम केयर देना स्टार्ट कर दो। वेल्विलीन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड, सो वहां पर आप अपनी गाड़ी चेक करवा सकते हैं। अगर आप ऑयल चेंज करवा रहे हैं ना वहां पे जाके, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट उनकी तरफ से मिलने वाला है, एंड ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट जो है, जिससे आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री रहती है। क्योंकि जब भी आपकी कार जो है वो थोड़ी सी बेचारी बीमार हो जाती है तो फिर वो पता लगता है कि आपने कहां कहां पे क्या क्या चेंज करवाया, क्या चीज है, उसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री होती है। सो अपनी कार को थोड़ा सा पैम्पर करिए और जरूरी नहीं है कि जब वो रुक जाए और कुछ हो जाए तब जाके आप चेक करवाओगे, है ना। सो आप वहां पर जाएंगे उनके शोरूम, वो भी करिएगा, लेकिन अगर आप कॉल करके पहले इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, वो आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। सो जब कॉल करेंगे आप इस नंबर पर 7765594, जी हाँ 7765594, इस नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो बता दीजिएगा कि सिमरन कौर ने बताया था।

0: शॉपिंग स्प्री कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on old gold exchange.

इतनी सारी गर्मी में घर पे बैठे रहो या मॉल में चले जाओ या फिर ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर एयर कंडीशन एरिया है यार। लेकर इस पूरे हफ्ते के एंड तक जो है वो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ऐसी न्यूज आ रही है। सो 39 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 48% है। सो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर था 44 डिग्री सेल्सियस, सो मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस। सो या आप अपने दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रखिए, बाकी सब बर्दाश्त हो जाएगा।

0: शॉपिंग स्प्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
2: Hi, I'm Divya Dutta, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: I'm in number one, Radio Olive.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हां जी स्टूडियो की घड़ी पे जबरदस्त इवनिंग्स में। और जहाँ पर हम सेलिब्रिटी की बात करें है ना, तो हम सोचते हैं कि यार सेलिब्रिटीज हमको फॉलो करें, हम उनको फॉलो करें, लेकिन क्या होता है कि मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि

0: ऑलिव कोड के देरो जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیف 106.3 FM جیو بنداس.
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वेल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
3: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
4: विजिट वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वेल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
5: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
7: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: हाँ जी होना है फना गानों से मजा आ रहा है तो बताया करो यार। क्या है व्हाट द वायरल में आज
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: देखो हम कतर में रहते हैं चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए लेकिन जो चाय लवर है जो कड़क लवर है वो कड़क को छोड़ते नहीं है लेकिन अब कड़क को ठंडा कर दिया है माहौल उसका कैसे अब कतर में एक आइसक्रीम वायरल हो रही है जो कि कड़क फ्लेवर आइसक्रीम है मेरे को बहुत ट्राई करने का मन है आई एम नॉट श्योर कि कैसी लगेगी बट सब लोग इसको ट्राई कर रहे हैं और इट्स ट्रेंडिंग तो मेरा भी मन कर रहा है आप में से किसी ने कड़क फ्लेवर आइसक्रीम ट्राई करी है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है क्योंकि काफी एक्साइटिंग लग रहा है अब चाय ठंडी हो गई है और आइसक्रीम बन गई है यार सिमरन कौर आपके साथ जी हो बिंदास

फरेब तो कुछ भी नहीं है। जिस फरेब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो भाई अलग ही लेवल का है। सो एक न्यूज जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे, एक बंदे ने 37 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना नाम चेंज करवाया क्योंकि उसके ऊपर लीगल एक्शन ना हो सके, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस से डेट करने के लिए। माय गॉड, लाइफ में क्या क्या चल रहा है यार, लोग क्या कर रहे हैं, 37 सर्जरी, नेम चेंज। भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर आपको मौका मिले आपकी एक्स को या फिर आपके एक्स को वापस से डेट करने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? 3311106 पर आप मुझे वो इस नोट

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas
1: The biggest shopping spree in Qatar Safari Hypermarket ka newest outlet Safari Shopping Center aaj 3rd August Logistics Village GWC mein grand opening kar raha hai Opening celebration ke mauke par visit and win promotion ke saath bina koi purchase kiye aap jeet sakte hain do Chevrolet Captiva cars raffle draw ke through साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइसेस तो इंतजार किस बात का सभी का स्वागत है
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
2: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ

तो ह्यूमिडिटी से भीग रहे हैं यार हम लोग। तू झूठी में मकार से आप ये गाना सुन रहे हैं। और आज हम जिस फिल्म के बारे में ट्रिविया शिविया में बात करने वाले हैं

दिल है कि मानता नहीं, इसके गाने बहुत प्यारे हैं, फिल्म भी बड़ी प्यारी है। आमिर खान ने इसमें जो एक कैप पहनी होती है ना, सो वो कैप को ढूंढने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इस कैप को ढूंढने के लिए 10 घंटे लगे थे और उसके बाद वो एक्चुअली कैप के लिए ट्रेंड जो था वो बन गया था। एंड मुकेश भट्ट जो थे वो आमिर खान और पूजा भट्ट को टॉम एंड जेरी बोलते थे, क्योंकि वो सेट्स पे इतनी ज्यादा लड़ाई करते थे छोटी छोटी चीजों के लिए। सो या और भी बहुत सारी बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। एंजॉय करते रहो तुसी म्यूजिक, कितने हो की कर रहे हो दोस्तों। 3311106

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
2: जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मानता नहीं कि गाने भी बड़े प्यारे थे। इसमें एक और गाना था, मैनू इश्क दा लग गया रोग। सो ये जो गाना था ना वो कुमार सानू की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन समहाउ कुछ तो हुआ तो गुलशन कुमार ने बोला कि ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में जो है वो रिकॉर्ड करो, और उसके बाद वो ये गाना उन्हीं की आवाज़ में आया और एल्बम में वो गाना जो था वो कुमार सानू वाला वो आया ही नहीं। एंड जब ये फिल्म बन रही थी तो ऐसा बोला जाता है कि आमिर खान और पूजा भट्ट के बीच में चीज़ें जो थी वो चल रही थी, और उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हुई कि इस फिल्म के बाद अगर उनसे कोई फिल्म में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बोलता था वो मना कर देते थे। और इसमें एक और चीज़ हुई कि इस फिल्म में पूजा भट्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लिप सिंकिंग की। सो लिप सिंकिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने जो लास्ट फिल्म डैडी की थी ना उसमें उस फिल्म में गाने ही नहीं थे, तो उनकी समहाउ वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो भाई महेश भट्ट ने उनको डांट दिया, उन्होंने बोला कि बेटा अगर तूने नहीं किया ना तो तेरे को फिल्म से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। सो या और भी बहुत सारी बातें होती हैं यार जब भी कोई फिल्म बनती है, सो ये उनमें से एक थी।
1: ओ सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू जद वी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू।
0: ये उनमें से एक नहीं थी, उनमें से बहुत सारी थी जो मैंने आपको बता

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: गाने चल रहे हैं यार। और अब बात करते हैं जिसको करने में मुझे बड़ा मजा आता है,
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: यार कभी किसी से बात करते हुए या मिलते हुए आपको ये लगा कि यार आपको बड़ा डाउन फील हो रहा है यार, मतलब इससे बात करके आप सिर्फ बात खींच रहे हो और सिर्फ आप ये चाहते हो कि ये जो मुलाकात है या फिर ये जो फोन कॉल है ये किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए। यार मुझे लगता है कि इन चीजों को ना आपको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। जब आपको पहली बार में ये एहसास हो जाए कि ये मीटिंग और ये फोन कॉल आपको डिम कर रही है ना, आपका ऑरा जो है वो माइनस कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो आपको पूरा पूरा राइट है कि वो चीज़ आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आपको ड्रेन करती है। जब आप चीज़ें ज़बरदस्ती करते हो, फोर्सफुली किसी से बात करते हो, फोर्सफुली किसी से आप मिलते हो, सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसी फीलिंग आए निकल लो। वापस लौट के नेम गेम खेलते हैं और आप लोगों के नाम लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का नाम देख के और आप लोगों की मैसेजेस सुन के मुझे वॉइस नोट सुन के बड़ा दिल को सुकून मिलता है और मेरा मन करता है कि आप भेजते रहो यार।

0: सनस्क्रीन कतर सफारी हाइपरमार्केट का न्यूएस्ट आउटलेट सफारी शॉपिंग सेंटर आज 3 अगस्त लॉजिस्टिक्स विलेज GWC में ग्रैंड ओपनिंग कर रहा है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के मौके पर विजिट एंड विन प्रमोशन के साथ बिना कोई परचेस किए आप जीत सकते हैं 2 शेवरलेट कैप्टिवा कार्स राफेल ड्रॉ के थ्रू। साथ ही मिलेंगे बहुत सारे इनॉग्रेशन ऑफर्स एट लोएस्ट प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का, सभी का स्वागत है।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जी मैं जी सुने हो कितना देखिए हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल एंड अब हम खेलेंगे नेम गेम में। अभी क्विकली आप लोगों के नाम लेने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे ले दूं तो आप अभी कभी अपना नाम मुझे रेडियो पे लिख के भेज दीजिए। किस तरह से भेजेंगे, मेरा वही व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजो और मैं नाम बोलती हूँ। श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच, अतर अब्बास जी थैंक यू सो मच, किसी ने लिखा प्लीज दिस नेम, प्लीज आप अपना नाम लिखिए सर क्योंकि मैं मैसेज ओपन नहीं करती हूँ। विसल खान जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, सॉरी इब्राहिम जी थैंक यू सो मच, सजा जी थैंक यू सो मच, नबील कुरेशी जी थैंक यू सो मच, आफारा जी थैंक यू सो मच, पाली जी थैंक यू सो मच, साजिद खान जी, लतीफुल्ला जी, मुशीर जी, अकरम जी मेरे को खांसी आ रही है सॉरी हाँ रुखसार जी थैंक यू सो मच, अकरम जी थैंक यू सो मच, मुशीर जी थैंक यू सो मच, आलम जी थैंक यू सो मच, साजिद जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, विसल खान जी थैंक यू सो मच, अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच, कामरून जी थैंक यू सो मच, सफदर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अजीत जी थैंक यू सो मच, साजिद जी थैंक यू सो मच, करीम जी, मुजामी जी थैंक यू सो मच, अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच, मेनुका जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखो दोस्तों और कुछ नहीं लिखना है। स्वरणजीत कौर जी थैंक यू सो मच, हामिद भाई जी थैंक यू सो मच, अदनान गुजर जी थैंक यू सो मच, दुबई से सुन रहे हैं हमको ये, कृष्णा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाबाश गुलजी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला, फिर मत कहना मेरा नाम नहीं बोला, जल्दी जल्दी लिख लो। मुबीन जी थैंक यू सो मच, अजीज जी थैंक यू सो मच, नेहा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिख दो और एक काम करो अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा। मोहम्मद यूसुफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अनेबिया विसल जी थैंक यू सो मच, हसन खान जी थैंक यू सो मच। मैं ना भाई अपनी मुंडी घुमा लेती वरना आप लोगों के नाम आते रहेंगे और फिर अगला गाना ही प्ले नहीं हो पाएगा। लो जी चक्को फिर

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वेल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वेल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
1: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: राइट सो दीवानगी आपकी बॉलीवुड के लिए कैसी है, चलिए चेक करते हैं।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: ऑल राइट सो मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली और बताइए गाना कौन सा है। भाई बड़ा इजी है, बताओ ये गाना आपको समझ लग गया है तो गा के बता दो कि जाड़ा बढ़िया रहेगा। लिख के मत बताना, चाहे आप मुझे वॉइस नोट के थ्रू बताना, चाहे बोल के बताना, चाहे गा के बताना, बट लिखना मत। और हे सिमरन अपना नाम बताइए और भेज दीजिए 3311063 पर एक बार फिर से। जल्दी से इंतजार कर रही हूँ मैं।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: 38 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया।
0: और एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको सुनाया था, और चलिए आप लोगों के जवाब।
3: तुम पास आए यू मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। हाय मेरा नाम रूबी।
0: हाय रूबी।
4: हाय सिमरन।
0: हाय
4: मेरा नाम समीम।
0: हाँ
4: ये गाना जो है वो कुछ कुछ होता है फिल्म का है।
0: ओके थैंक यू।
4: क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है।
0: थैंक यू सो मच।
5: हाय सिमरन।
0: हाय
5: दिस इज अशफाक।
0: हां जी।
5: तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या
0: सपने सजाए।
6: सिमरन गिरीश यार।
0: हां जी।
6: आपने जो अभी गाना सुनाया वो है

0: जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है।
1: एक नंबर जियो बिंदास।
2: Hey Simran, this is Mubashir. The song is Tum Paas Aaye,
1: Oho,
2: Yun Muskuraye.
1: Kya acha ga rahi thi yaar, aur ga rahi thi.
3: Tum Paas Aaye, Yun Hi Muskuraye. Tumne na jaane kya sapne dikhaye, ab to mera dil jaage na sota hai. क्या
1: करूं हाय
3: राम, कुछ कुछ होता।
1: यार मेरे सारे लिसनर्स इतने क्यूट है ना यार, बिल्कुल गाना बिल्कुल सही पहचाना। और यार आप लोग जो गाते हो मजा आ जाता है यार, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लिख के कभी भी मुझे जवाब मत दिया करो, हमेशा मुझे वॉइस नोट भेजा करो, इसी बहाने आप लोगों की आवाज सुन लूंगी और मजा

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास रेडियो ओलिव पे स्टोरी ऑफ द डे
1: हर कमेडियन के पास जोक्स होते हैं। इस कमेडियन के पास पूरी दुनिया थी, एक ही चेहरा, लेकिन कभी गुत्थी, कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो कभी रिंकू भाभी। और कमाल की बात, लोगों ने एक्टर को नहीं उनके कैरेक्टर्स को अपना बना लिया। आज बर्थडे है उसी इंसान का जो स्क्रीन पर आता नहीं, स्क्रीन पर छा जाता है।
2: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

क्या बोलते हो, चली जाऊं मैं? अरे जा रही हूँ तो फिर कल शाम को 5 बजे आ भी तो रही हूँ। अगर सब कुछ शॉर्ट हो जाता तो आप एक दिन की छुट्टी ले लेते ऑफिस से और पूरा दिन सोच लेते। सो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, बस इतना बोलना चाहूंगी। एंड कल मिलते हैं जबरदस्त इवनिंग से। मैं खांदे भी देर ऐश करते रहो, चेहरे दे बड़े स्माइल, लोगों किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. आवर शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, मिडनाइट लाउंज. यू नो, हर नया दिन आपको कुछ नई चीजें सिखाता है, कुछ नए कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नया आप सीखते हो. सो आज की कहानी एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है, लेकिन यहाँ जाकर आप एक काम नहीं कर सकते, वो है खाना ऑर्डर. अब आप सोचोगे यार रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर नहीं कर सकते. यस, जापान में एक कॉन्सेप्ट है ओमाकासे. यहाँ मेन्यू आप डिसाइड नहीं करते, शेफ करता है. वो देखता है कि आज सबसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके पास, और फिर वही आपकी प्लेट में आता है. पहली बार सुनो तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार रेस्टोरेंट जाते हैं आप अपना फेवरेट खाना खाने, पर आप अपना फेवरेट खाना ऑर्डर ही नहीं कर सकते. हम तो रोज हर चीज चूज करना चाहते हैं, राइट? चाहे वो पिज्जा की टॉपिंग हो, कॉफी में शुगर है या नहीं है, लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. लेकिन कभी कभी ना सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती. कभी किसी एक्सपर्ट पर ट्रस्ट करने का भी एक अलग मजा है. सो उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, और शायद जिंदगी भी इसी का नाम है. हर चैप्टर हम नहीं लिखते, कुछ कहानियां बस जी लेनी चाहिए. और इसी के साथ आप मुझे बताइए, अगर आपको बिना मेन्यू देखे डिनर करना पड़े तो ट्रस्ट करोगे शेफ को, या फिर बोलोगे कि यार रिस्क नहीं लेना. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. So हम सोचते हैं रॉकेट लॉन्च का मतलब सिर्फ काउंटडाउन है 10, 9, 8. लेकिन उस काउंटडाउन से पहले मिशन कंट्रोल में एक और चीज होती है, खामोशी. यस, जब नासा के इंजीनियर्स बताते हैं कि लॉन्च के फाइनल मोमेंट में सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिनके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी सब बस सुनते हैं. सोचिए जितना बड़ा मोमेंट उतने कम वर्ड्स. कितनी खूबसूरत चीज है ना. हम अक्सर इंपॉर्टेंट मोमेंट में सबसे ज्यादा बोलने लगते हैं क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं. लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि प्रेशर के वक्त शोर नहीं, क्लैरिटी चाहिए. शायद इसीलिए जिंदगी के बड़े फैसले भी खामोशी में ही सबसे अच्छे होते हैं भाई. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो आप लोग लोगों से बात करते हो या थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठने के थोड़ा वक्त बिताते हो? मुझे ऐसा लगता है जब मेरी लाइफ में सबसे अच्छा मोमेंट होता है, जब खुशी होती है, तो मैं सबके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ. मुझे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ. सो आप मुझे बताइए आप कौन सी कैटेगरी में, आप उसे खुद अकेले इंजॉय करते हैं या फिर सबके साथ शेयर करते हैं? 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो आज एक फिल्म की कहानी, लेकिन हीरो या हीरोइन की नहीं, ऑडियंस की। हॉलीवुड में एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, फिल्म रिलीज होने से पहले उसे कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखाया जाता है। इसे कहते हैं टेस्ट स्क्रीनिंग। इंडिया में भी होती है और कई बार ऑडियंस का रिएक्शन देखकर पूरी एंडिंग ही बदल दी जाती है। फिल्म प्रिटी विमेन और कई सारी ऐसी मूवीज की एंडिंग ना इसी वजह से चेंज हो गई, मतलब सिर्फ उसकी स्क्रीनिंग में, जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती है उसी में। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू। शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। सो कहानी डायरेक्टर लिखता है, लेकिन कभी कभी उसे पूरा ऑडियंस करती है, और शायद लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। हम प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन लोग, वक्त, सिचुएशन और एंडिंग को और खूबसूरत ये सब चीज़ें बना देती हैं। सो यू टेल मी, अगर आप अपनी लाइफ का एंडिंग लिखते तो क्या वैसे ही रखते या फिर कुछ बदलना चाहते? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और ये है मिडनाइट लाउंज। नंबर इज सेम, 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज
2: ये है मिडनाइट लाउंज
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

सो हैव यू नोटिस्ड यू नो एक प्रॉब्लम को घंटों तक देखते रहो, सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर चाय पीने के लिए उठ जाओ और अचानक आइडिया आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं एक इफेक्ट जिसका नाम है इनक्यूबेशन इफेक्ट। ठीक है, जब हम थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, हमारा ब्रेन ना चुपचाप उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, और इसीलिए कई सारे राइटर्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट के बेस्ट आइडियाज जो हैं वो डेस्क पर कभी नहीं आते। वॉक करते हुए, कॉफी के ब्रेक के टाइम पे, दोस्तों से बात करते हुए। सो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, कभी कभी जो आंसर है ना वो मेहनत करने से तो नहीं मिलता, थोड़ा रुकने से मिल जाता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके बेस्ट आइडियाज आपको क्या लगता है कि कब आते हैं? या तो आपको यू नो ड्राइव करते टाइम, या फिर जब आप कैब में अपने घर जा रहे होते हो, या फिर आपको लगता है कि यार दोस्तों के साथ बैठ के सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं और उसी टाइम आइडियाज आते हैं। यू टेल मी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। नंबर इज सेम 3311063। फटाफट से व्हाट्सएप करके बताइए, आई हैव लॉट ऑफ मैसेजेस टुडे और उनको भी पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट

यार व्हेन वी टॉक अबाउट पेशेंस ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कितना पेशेंस होता होगा उन साइंटिस्ट में जो अपनी स्टडीज को सालों साल चलाते हैं, यू नो एक्सपेरिमेंट की कहानी करते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. यू नो मैं जब आपसे पूछती हूँ कि यार लाइफ में अगर आपके पास ये दो सिचुएशंस होती तो आप क्या करते, और मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के साथ कि यार लाइफ में ऐसा होता तो हम वो करते ये करते. और मुझे लगता है जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो तब आप लाइफ के अलग अलग यू नो तरीके से जीने के रास्ते देख पाते हो. सो यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट पेशेंस नाउ. ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में 1927 में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. पिच नाम का एक सब्सटेंस देखने में बिल्कुल सॉलिड लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि वो बहुत धीरे धीरे लिक्विड की तरह फ्लो करता है. बस उसी बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ. और पता है क्या, लगभग 99 ईयर्स 100 ईयर्स होने वाले हैं एक्चुअली, और अब तक सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स गिरे हैं. सोचिए एक एक्सपेरिमेंट जो 3 generation देख चुकी है, और हम तो मतलब फ़ोन स्लो हो जाए तो 10 seconds में इंपेशेंट हो जाते हैं. हमें लगता है कि यार क्या है, फ़ोन चल क्यों नहीं रहा, व्हाट्सएप नहीं खुल रहा. मतलब यहाँ लोग एक यू नो एक बूंद का इंतजार कर रहे हैं पिछले 90 से 100 साल में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है. और शायद हर चीज का अपना एक वक्त होता है, कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं और कुछ इंतजार करना सिखा कर जाती हैं. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आपने सबसे लंबा इंतजार किया है और आपको लगता है कि यार उसका फल आपको जरूर मिलेगा. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

में जो स्माइल वाला बनाने के लिए सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, राइट? रीजन, लोग ईमेल्स और ऑनलाइन मैसेजेस में जोक्स को सीरियस समझ लेते थे, बस कंफ्यूजन कम करने के लिए एक स्माइल बना दिया गया, ठीक है? और धीरे धीरे ये छोटी सी स्माइल पूरी डिजिटल दुनिया की लैंग्वेज बन गई। कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, कभी कभी एक छोटा सा स्माइली एक लंबी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा काम कर जाता है। एंड आई वॉज थिंकिंग, अगर ये इमोजीज नहीं होते तो मैं तो शायद चैट ही नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे तो चैट में सिर्फ इमोजीज ही भेजने आते हैं। आपका मोस्ट यूज्ड इमोजी कौन सा है, और सच सच बताना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। मुझे कहना

वेलकम बैक। कैसे आपसे बातें करते करते टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो कभी सोचा है जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसका क्या होता है? इंग्लैंड के एक नहीं कई सारे शहरों में जो लाल टेलीफोन बूथ्स हुआ करते थे मोबाइल फोन्स के बाद ना उनकी ज़रूरत लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी आप उनको पिक्चर्स में देखोगे, आप उनको फोटोग्राफ्स में देखोगे। उन्हें तोड़ने की बजाय लोगों ने उन्हें छोटी छोटी लाइब्रेरीज बना दिया। अब वहाँ फ़ोन नहीं बचते लेकिन किताबें लोगों को बुलाती रहती हैं। कई बार आपने ऐसे लोगों को जब लंदन में या कहीं पर देखा होगा तो वो रेड कलर के फ़ोन बूथ्स देखे होंगे उनके पिक्चर्स में। सो कोई एक बुक रख कर जाता है, कोई दूसरी लेकर जाता है। और मुझे इस कहानी का सबसे खूबसूरत बात पता है क्या लगती है? जब एक चीज़ का ओरिजिनल पर्पस ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। कभी कभी नया चैप्टर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप अपनी कॉलोनी में एक ऐसी मिनी लाइब्रेरी बना पाते या कभी आप अपने घर के आसपास या यू नो सोसाइटीज़ में बना पाते तो सबसे पहले कौन सी किताब उसमें रखते? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: है मिड नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

वेरी गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. शो खत्म करने से पहले आज एक छोटा सा वर्ड, सिर्फ तीन लेटर्स, PYT. डेनमार्क में लोग इसे तब बोलते हैं जब कोई छोटी सी गलती हो जाए. सो इसका प्रोनाउंसिएशन इज पाइट, राइट? कॉफी गिर जाए, बस मिस हो जाए या कोई प्लान कैंसिल हो जाए, मतलब इट्स ओके. ये हर मतलब छोटे छोटे वर्ड को एक बड़ा तरीके से समझाता है. ये हार मान लेना नहीं है, बस अपने दिमाग को कहना है कि हर छोटी बात को दिल पर मत लो, ठीक है? लीव इट, इट्स ओके. बस ये छोटा सा वर्ड आपको यही सिखाता है, जैसे ऑल इज़ वेल हमें थ्री इडियट्स से सिखाया गया था. सच बताऊँ, शायद हम सबको अपनी लाइफ में थोड़ा सा PYT यानी कि पाइट चाहिए. हर मैसेज का रिप्लाई परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, हर दिन सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है. कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक गहरी सांस लो और बस खुद से कह दो. बस आज का आखिरी सवाल आपसे यही है कि ऐसी कौन सी छोटी सी बात है जिसे शायद आज ही आप ऑल इज़ वेल कहकर या फिर एवरीथिंग इज़ फाइन कहकर आगे बढ़ना चाहोगे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 3311063. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. जियो बिंदास.

0: एनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: Morning's at night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
3: होम्स आर अस। वी कंप्लीट योर होम।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: बापू आ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास